सतगुरु होई दयाल ते सरदा पूरी है, सतगुरु होई दयाल ना कबहूं झूरी है, सतगुरु होई दयाल ता दुख ना जानिए, सतगुरु होई दयाल ता हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर ये खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

0: शादी दी मूवी बनवाउन ले या रिंग सेरेमनी ले वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ले। याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: पर हुन थोनू कार लेन ले रेडी करनगे मॉर्गेज द किंग गिरीश शर्मा
3: रेजिडेंशियल कमर्शियल रीफाइनेंसिंग डेट कंसोलिडेशन सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस प्राइवेट फंड्स
2: सब ले याद रखो गिरीश शर्मा प्री अप्रूवल ही नहीं क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ डीलिंग विद ऑल बैंक
3: कॉल 647-606-8110
2: और विजिट sharmamortgages.com
4: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੀਟਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ
0: ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਕ ਆਊਟ ਕੇਟਰਿੰਗ ਲਾਈਵ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
4: ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਕੇਟਰਿੰਗ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਖਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਓ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ
0: ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 4025 ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਗੇਟ ਡਰਾਈਵ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ 647-338-9172 कॉल करो गुरजीत रंधावा 6473389172
5: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
0: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
5: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
0: 6478355294 647-835-2954

0: वीजे री सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील लई याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 90545-12600. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons ch baith jaiye.
2: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne full privacy mil di hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग होगी।
2: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाप।

0: एक नोबल प्राइज फूड।
1: मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
2: जी हाँ, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो
3: 9 dollars
4: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

लो जी, ये ना दोहे हैं और मिक्स है ना, कबीर जी दे भी है, रहीम जी दे भी हैगे है, तुलसी दास जी दे भी हैगे है। सो ये ना बड़ी मकबूल हुई सी फिल्म। वो फिल्म दे विच जिवें कॉलेज दे विच कंपटीशन हुंदा है ना, सो दोहयां दा भी केड़ा जेड़ा एक दोहा बोलूगा तो दूजा वह आंसर दूगा। सो बड़ा वधिया ये कंपीटिशन सीगा इस फिल्म दे विच। सो कई फिल्मों दे विच इदा जड़े रहीम है, कबीर है, तुलसीदास है ना, इन्हां दे दोहे जड़े लिते गए हैं। पहला हिंदी फिल्मों च बड़ा हुंदा सी, हुण तां आई थिंक जड़ियां कोई नवी हैगी है, लगदा थानू किसे च हैगे ऐड किते हुए तां जरूर दस्यो। पर ये फिल्म बहुत मकबूल हुई सी, उहदे गाने इन्ने जबरदस्त सी, फिल्म भी बहुत जबरदस्त सीगी ते बहुत मशहूर हुई सीगी। ते फिल्म दा नाम जे पता जरूर दस्यो, ते जिन्हां ने देखी है वो भी जरूर दस सकदे आ, ते बाकी गल्लां बातां आपां होर भी करांगे। ते बड़ी जड़े दे विच ना ये दोहे सी और जड़ी ये फिल्म सीगी, इस नाम तो गाना जड़ा बड़ा ही मशहूर होया सीगा। और जिवें एक गाणिया की लेंथ हुंदी है, हाँ जी 3 मिंट है, 4 मिंट है, सो ये विच लेंथ गाणिया की बड़ी सीगी। जे इनू भी देखिए आपां 5 मिंट ते 24 सेकेंड का ये सारे दोहे ये लिते गए हैं। तो जिहड़ा इहदा मकबूल गीत सीगा ते आवाज़ भी बड़ी कमाल दी है। आवाज़ उस समय जिहड़ा ये सिंगर है ना, इन्हां दियां आवाज़ां उस समय बहुत मकबूलियत ते सीगियां, नंबर वन ते। एक होर भी बड़ी वधिया मूवी आई सीगी जिहड़े इहदे मेल सिंगर, वो उन्हां दी शुरुआत उत्थों हुई सीगी। सो जे याद है तां दस्सो जरूर, ते गल्लां बातां आपां करांगे अज तुहाडे नाल, ते नाल दी नाल फिर जिहड़ियां मेन होर गल्लां बातां वो भी तुहाडे तक जरूर करांगे जी शेयर।

0: जी बिल्कुल जी, ये फिल्म हैगी जी अक्खियों के झरोखों से। सो बड़ी मशहूर हुई सी फिल्म, ये गाने बड़े चले सी, फिल्म बड़ी चली सी। सो जड़ी ये आवाज़ सी ना, ये बड़ी मकबूल आवाज़ सी। एक तो हेमलता है ना, जे अपा फीमेल सिंगर दी वॉइस की गल करिए, ते दूजे सिंगे जसपाल सिंह। सो इन्हां दी जिहड़ी गीत गाता चल है मूवी, वो आई सी उत्थों ये ज़्यादा मशहूर हुए सी जसपाल सिंह। सो ये आवाज़ सी हेमलता ते जसपाल सिंह जी दी। सो गीत गाता चल दे जिहड़े सोंग है, वो भी जसपाल सिंह ने गाए से, उत्थों मशहूर हुए सी। गीत गाता चलो साथी गुनगुनाता चल, है ना, बड़ी बड़ी वधिया मूवी सी वो भी। सो उहदे च सचिन ते सारिका सी। ये फिल्म दे विच हैगे है जी सचिन दे नाल रंजीता। सो रंजीता दियां बड़ियां मूवियां उदों आउंदियां हुंदियां सीगियां, ते एक मूवी रंजीता दी केड़ी सीगी, बड़ी वधिया सोंग उहदे वी हैगे आ, लंबा जिहा नाम है उह मूवी दा, ते उहदे विच सीगे राज बब्बर, ते नाल दी नाल सीगे एक होर हीरो भी, बड़े मकबूल हीरो है, मैनू नाम नहीं हुण दिमाग च आ रहा। सो वह भी बड़ा बहुत मशहूर हुई सी वह मूवी भी, और वो सोंग बड़े मशहूर हुए सी। ते वह भी आपां गलबात करते हैं। ते लो जी गीत थानू सुनाया, गीत की भजन सीगा। सो ये जिन्ने भी साडे भगत हुए है, कबीर, रहीम, तुलसीदास, है ना, उन्होंने ये दोहे जड़े इस गीत विद्या शामिल किए गए। कंपीटिशन जहाँ कॉलेज के विच होंदा, ते जिवें होंदा ना भी हाँ एक नूं लगदा दूजे नूं नहीं आउंदे होणगे, क्योंकि ना उदों ना स्कूल्स दे विच भी इदां ही हुंदा सीगा कि असीं इह याद करदे हुंदे सी, है ना, वो चीज़ां नूं दोहराया गया। वैसे ये फिल्म दे विच जिवें उदों इह हुंदा सी भी हाँ हुण तुहानूं जदों एग्जाम होणे आ, एक तां तुहानूं अर्थ आउंदे होणे चाहीदे आ, एक तुहानूं वो दोहे उंज पूरा आउंदा होणा चाहीदा, है ना। ते जदों टीचर साडे कोल सुणदे हुंदे सी, या मीनिंग जिहड़े तुसीं सारांश लिखणा हुंदा सी, अर्थ शब्द अर्थ लिखणे हुंदे सी, ते फिर उदों जिहड़े हैगे इह आउंदे होणगे, तां ही तुहानूं पता होऊगा कि असीं इहदा अर्थ की लिखीए। सो असीं बड़े रट्टे मारदे हुंदे सी। आपां सारांश दी गल कीती ते सारांश नागपाल साडे नाल जुड़ गए आ। ते लो जी यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक तों साडे नाल सारांश जुड़े आ, इहनां तों आपां जिहड़ी सानूं वधिया दे रही है जी गवर्नमेंट ग्रांट, उहदा फायदा तुसीं चुकणा, ते उहदी जानकारी लै के इह हमेशा पहुँचदे आ, ते कहिंदे आ वी बस थोड़ा जिहा समां रहि गिआ ते तुसीं देरी ना करो, ते जरूर उस ग्रांट नूं अवेल करन दे लई तुसीं कॉल करनी है। मैं नंबर पहलां दे दिंदी हाँ, फिर आपां गलबात भी करते हैं सारांश दे नाल। यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक तो 437-264-3175 ते गलबात हो सकती है, 4372-643175 सारांश नागपाल दा नंबर है। सारांश की हाल चाल
1: जी?
0: जी जी बहुत वधिया, ते
1: जी
0: की साडे श्रोतियां दे लई मैसेज अज लैके आए हो यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो?
1: जी लिमिटेड ही टाइम रह गया है, 8 दिन रह गए हैं। आपने अगर अभी भी एनरोल नहीं करा गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स में तो आप अपना नुकसान करा रहे हैं, क्योंकि आपके सारे जितने फ्रेंड्स फैमिली हैं जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर चुके हैं, स्किल भी हासिल कर रहे हैं, फंडिंग भी हासिल कर रहे हैं गवर्नमेंट से डायरेक्ट अपने खाते में। कोई मीठी बातें नहीं है, कोई कैच नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही है 10 दिन के बाद। आज ग्रांट्स आ रहे हैं, 10 दिन बाद ग्रांट्स नहीं आ रहे, जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए आपकी चाहे जो भी एज है, चाहे आप 75 के हैं पेंशन पे हैं, चाहे आप 30 या 40 ईयर्स के हैं, आप हमें कॉल करें। पीआर सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, कहीं भी रहते हैं आप ओंटारियो में, आप एलिजिबल है। इसमें कोई क्रेडिट चेक नहीं होता, आसान से ऑनलाइन कोर्सेज हैं जी, कोई हार्ड कोर्सेज नहीं है, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, असाइनमेंट है, एग्जामिनेशन नहीं है, स्किल हासिल करें, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज करें, साथ में फंडिंग 30 से 100,000 अपने अकाउंट में हासिल करें। इस फंडिंग का हाफ पोर्शन आज के डेट में तो ग्रांट्स ग्रांट्स ग्रांट्स का जो पैसा अपने वापस ही नहीं करना होता।
0: अच्छा सरांश, जैसे आपने कहा बस थोड़े दिन के लिए ही है, बस उसके बाद तो फिर लोन ही मिलेगा, ग्रांट अवेल नहीं कर सकेंगे, तो चांस है कि डेट आगे कर दें वो थोड़ी बहुत ही कि नहीं?
1: नहीं जी नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी बन चुकी है, नया नया कैलकुलेटर भी आ चुका है गवर्नमेंट का, अकेडमिक ईयर 26-27 का जो कैलकुलेटर है वो आ चुका है। मतलब उसमें अगर हम आपके नंबर्स रन करते हैं, मतलब आपके किड्स कितने हैं, आपकी इनकम 2024 के एनओए में कितनी है, जितनी आपकी कम इनकम है उतना ज्यादा फायदा है। तो मतलब इसमें वो आ चुके थे जो कैलकुलेटर ना गवर्नमेंट का, इसलिए अभी ही फायदा है। आज की डेट में ग्रांट्स वर्ड यूज हो रहा है, आगे जाके नहीं होगा। फंडिंग का वर्ड सुन के हमें लगता है कुछ कैच होगा, कुछ झोल होगा, बट हम कोई काम ऐसा करते ही नहीं है। 8 साल हो गए हैं, इतनों को सिर्च कर चुके हैं, हम और किसी फंडिंग में डील ही नहीं करते जिसमें कोई कुंडी होती है।
0: ठीक है, अच्छा थोड़ा ये बताएं कि एलिजिबिलिटी कैसे जज कर सकते हैं, पहले तो घर में अपने आप और फिर आपसे कांटेक्ट वो करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है एक बारी थोड़ा अच्छे से बताएं।
1: हाँ जी, बेस्ट सूट करता है अगर सेल्फ एम्प्लॉयड, उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, हाउस वाइफ, अनएम्प्लॉयड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी अकेडमिक सेशन चल रहा है 25-26, इसमें 24 का एनओआई गवर्नमेंट देखती है आपका। जितनी आपकी फैमिली इनकम कम है, आप माने 70,000 से कम है आपकी इनकम हस्बैंड वाइफ की मिला के, तो आपको फायदा है। आप PR है, सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपका क्रेडिट स्कोर चाहे 0 भी है आप एलिजिबल है। और लाइक आसान से ऑनलाइन कोर्सेज है, कोई एज लिमिट नहीं है जी, हमारे क्लाइंट 35 के भी और 75 ईयर्स के पेंशन वाले भी हैं। आसान से कोर्सेज हैं, 2 से 3 घंटे आपने रेडियो निकालने हैं, असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, आप स्किल सीखते हैं, फंडिंग गवर्नमेंट से हासिल अपने अकाउंट में करते हैं। जैसे हमारे कितने क्लाइंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। हमारा बिजनेस ऐसा नहीं है कि भैया जी आज सेल लगी और आगे से सेल कभी नहीं आएगी और 10 दिन बाद वही सेल फिर से आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। आज पॉलिसी फेवरेबल है, अप्लाई करें, बाद में इतना फेवरेबल नहीं होगा।
0: ठीक है, तो एक बात और है कि जैसे अब कई चाहते हैं कि लोन तो हमारे पास पहले ही इतना है तो हम ग्रांट ही ले लें, ऐसा है पॉसिबिलिटी?
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। आप मान के चलें 20% क्लाइंट सिर्फ ग्रांट से खुश जाते हैं कि भाई हमें लोन चाहिए नहीं, लोन बहुत है। बट ये लोन डिफरेंट है, कैसे? अगर आप मान के चले फैमिली ऑफ 4 है, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं, 80,000 की फंडिंग बनती है आज की डेट में, सिर्फ 10 दिन तक कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कि 15 दिन बाद आएंगे सर ऐसा करा दो, नहीं होगा था, हमारे हाथ में नहीं है। अब 80,000 फैमिली ऑफ 4 की फंडिंग बनती है, उसमें से 40,000 ग्रांट है, 40,000 लोन है। जब वो ऑफिस आते हैं उनको पता लगता है लोन पहले तो 0% पे एक साल तक, नंबर वन, बिना क्रेडिट चेक मिल रहा है, नंबर टू 40,000 डॉलर है ना, और आपने 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना है आसान सी किस्तों में, 10 साल से 15 साल में लौटा सकते हैं। ब्याज कितना है? 2.5% साल का, 40,000 का आपने 44,000 लौटाया। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं रोते हुए, आप मानिए कि सर 20% ब्याज है हमारे पे क्रेडिट का, 22% ब्याज है, करा दो कुछ करा दो, और जब काम हो जाता है मिठाई का डब्बा ब्लेसिंग, बड़े बड़े लोग भी आते हैं, लोग इतने फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजर रहे हैं। गवर्नमेंट जब LGBT पे 100 मिलियन लगाती है, रिफ्यूजीज के हेल्थ केयर पे 1 बिलियन लगाती है, डेंटल केयर, चाइल्ड केयर, तो गवर्नमेंट एजुकेशन में स्पेंड करके तो जो लोग रह गए हैं वो रहे ना, कोई इसमें कुंडी कैच नहीं है। असली कागज लगते हैं आपको NOA, उसके बेस फंडिंग आती है, और गवर्नमेंट को नकली कागज सबमिट करेंगे ही नहीं तो कुंडी है ही नहीं कोई। तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं, 437-200-31-75
0: जी। ते सरांश जिवें हुण कोई कोर्स कर लैंदे आ फिर ओह जॉब दी ओपरचुनिटी उहनां लई अवेलेबल हुंदी ही है कि नहीं हुंदी? जे नहीं हुंदी तां फिर ओह की करन अगे?
1: देखिए जी, अब इसमें इसमें तो ऐसा भी है, कुछ लोग जॉब करते हैं राइट, अकाउंटिंग ऑफ कोर्स करके खुद अपना लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस शुरू कर लेते हैं अकाउंटिंग ऑफ कोर्स करके घर से।
0: ठीक है,
1: तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब ऐसे में इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने कोर्स करना लाइक जॉब करनी है, कोलैटरल फ्री, सिक्योरिटी फ्री फंडिंग है, कोई कैच नहीं है, उल्टा लोन डेफर हो जाता है अगर आपकी जॉब ना लगे गवर्नमेंट को फोन करके। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, हफ्ता रह गया है, लोन भी इतनी आसान शर्तों पर, ग्रांट भी इतनी ज्यादा, और फैमिली ऑफ 2 को अप टू 45,000, फैमिली ऑफ 5 को अप टू 100,000 की फंडिंग आती है। इन दोनों फंडिंग की रेंज में से आप पैसा क्या है, ग्रांट जो पैसा वापिस ही नहीं करना होता। अब आती है हमारी फीस की बात, कोई मीठी बातें नहीं है, ऑन एयर भी एक फीस है और ऑफ एयर भी एक फीस है, $199 या $499। काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी है। लास्ट वीक अराउंड 28 बंदों की फंडिंग उनके खाते में गिरी है, अब वो हमारी फीस खुद ही इंट्रैक्ट कर देंगे, ईमानदारी से काम करते हैं, लोगों से पैसे मांगने नहीं पड़ते, खुद ही दे देते हैं। लोग आते हैं कहते हैं कि सर दूसरे एजेंट ने पहले से हमसे इतने पैसे मांग लिए, 2500 मांग लिए, हम तो काम होने के बाद लेते हैं, कोई कैच नहीं है, कोई कुंडी नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है, कोई चालाकी है ही नहीं, गारंटी लेता हूँ। तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं, गवर्नमेंट आज मेहरबान है, आपके सारे आस पड़ोस वाले एनरोल कर चुके हैं, आपको वो अगर बता नहीं रहे तो मतलब आपसे झूठ बोल रहे हैं। तो कॉल करें, 437-200-31-75, 437-200-31-75, उन्हें कॉल करके एस्टीमेट लो जी, 437-264-3175। प्रॉपर ऑफिस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, 8 से 9 बंदे काम करते हैं सर, और 8 साल हो गए हैं, हजारों को हेल्प कर चुके हैं, कोई कैच नहीं है, कॉल करें ऑफिस आए 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, और असेसमेंट आप ऑफिस में करा सकते हैं, कॉल पर भी करा सकते हैं। नंबर नंबर नंबर 437-204-3175 437-204-3175 437-264-3175 437-204-3175।
0: थैंक यू सराश। ते बिल्कुल जी तुसी जरूर गलबात करो, यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी इंक दे नाल गलबात करो, ते ग्रांट किवें तुसी अवेल करनी है, किन्नी देर बाद लोन तुसी दे सकदे हो, केड़ी केड़ी केड़े केड़े कोर्स दे विच एनरोल हो सकदे हो, है ना, ये सारा कुछ थानू दसणगे। बस तुसी नंबर नोट कर लो 437-264-3175 437-264-3175 ते गलबात तुसी कर लो। ते लो जी हुण आपां परमजीत दियोल जी नाल भी गलबात करिए, जे कोई भी थोड़ा क्वेश्चन कंसर्न हुंदा ना, कोई तुसी प्रॉपर्टी लैनी है वेचनी है, क्योंकि हुण जिहड़ी मार्केट है ना ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਿੰਗ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਪਰਮਜੀਤ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੁ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੌਟ ਲਿਸਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਸਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਫੋਰੋ ਵਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਲ $10,000 ਪਰ ਵੀਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੈਂਟ ਸਿਰਫ $4,800 ਪਰ ਮੰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5+5 ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਅ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਸਟਿਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਆ। ਇੱਕ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਅ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ $499,000 ਵਾ, ਸਟਿਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-993-7378। ਦੂਸਰਾ ਬਿਊਟੀ ਸਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਸਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੈਂਟ ਸਿਰਫ $4,100 ਪਰ ਮੰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੀਜ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 5+5 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ $69,000 ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਸਟਿਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਸਲੋਨ ਮਿਸਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿਸਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਊਟੀ ਸਲੋਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿਊਟੀ ਸਲੋਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-993-7378। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਲਟਨ ਮਿਸਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਮਿਲੇਗੀ। 9-10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ

0: 8877sofastudio.ca. थैंक यू जी।
1: मैं नवा कार लिया, तेनु पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है, एक बाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी, नाले मैं सोचता हूँ वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए, हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कितों लईए।
2: हो जी, इदे च समझण वाली केड़ी गल है, सारे कमां लई इक्को जगह। चलो

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 Brampton
2: आप पंजाबी आ गए
3: IPL चल रहा है only on Karo Stream Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
4: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करदा आ रहा है केक्स पेस्ट्रीज मठियाईयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचन वालियां तो बचो ते जसपाल नागरा नू फोन करो
5: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी ऑल्सो शिप कार्स वी ऑल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
6: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers
7: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशियां तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडियां दे नशियां तो दूर कर देंदे हैं डॉक्टर कुमार लेडीज़ां दे मर्दां दे गुप्त रोगां दा इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गां दे मोढे गोडे दुखदे हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेखदे हैं डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा माल्टन गुरु घर दे कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो
8: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
9: Toronto's number one station, AM 530.
10: Punjabi Versa.

0: फरमाइश की है बलविंदर सिंह जी। बलविंदर सिंह जी, कैसे गीत की आपने फरमाइश की है सुबह सुबह, तो गीत तो ये है ही बड़ा प्यारा है, किन्नी वधिया गीत दी तुसी सवेरे सवेरे चोन की है, और वाकई गीत बड़ा वधिया। सनम तेरी कसम, ओ मेरी कसम, ओ सनम सनम तेरी कसम, जैसे मैं जरूरी हूं तेरी खुशी के लिए, तू जरूरी है मेरी जान सिंह हरजीत की जिंदगी के लिए। पंजाबी वैसा 905-673-3337 आपकी और हमारी बात स्टूडियो में हो सकती है। 905-673-3337 स्टूडियो का नंबर है। एचके मूवर्स तुहाडे वास्ते हाजिर है, तुसी अपनियां गड्डियां मूव करवाउणियां कैलगरी, एडमिंटन, विनिपेग, ओटवा, मॉन्ट्रियल तो चला के लियाउण दी लोड़ नहीं, किलोमीटर बहुत पै जाने हैं। जे 500-700 हज़ार डॉलर लगता भाई, तेल भी फूकना गड्डी दे नाले, दिहाड़ी भी भन्नी अपनी, ठीक है। तो जे गड्डियां तुहाडियां उत्थों मूव हो गए इत्थे आ जाण, 500-700 हज़ार जे होर की चाहिए, नाले किलोमीटर नहीं पैने, नाले गड्डी सेफ, ट्रेलर च गड्डी आउणी आ, कोई एक्सट्रा खर्चा नहीं, आराम नाल इहनां दे वेयर हाउस गड्डी पिक करो ब्रैम्पटन तो, ठीक है जी। एच के मूवर वाले कहिंदे आ जे तुसीं मूव हो रहे ट्रांटो तुहानूं महंगा लगता, जे तुसीं कैलगरी, एडमिंटन, विनिपेग जा रहे हैं, मॉन्ट्रियल, ओटवा जा रहे हैं, ते भाई तुहाडा समान सारा लै जाणगे इत्थों ट्रक दे विच, पर तुहानूं नहीं ना जा सकदे नाल, इह तुसीं पता कर लो, मे बी तुहानूं वी नाल लै जाण, मैनूं उहदे बारे पता नहीं, पर डिटेल्स नहीं है मेरे को इस गल दी, समान दी डिटेल्स तां है, तुहाडा समान तां सारा लै जाणगे। जे किसे कोई मोटरसाइकल पिया, कई वारी कोई बंदा सपोज करो तुसीं कैलगरी तों आए हो, तुहाडा मोटरसाइकल उत्थे पिया, जां तुसीं वैनकूवर तों आए हो मूव हो गए ट्रांटो, जां तुसीं ट्रांटो तों वैनकूवर जाणा, अपने परिवार तुहाडे उत्थे रहिंदे आ, कोई तुहाडे कोल मोटरसाइकल है, गड्डी है, कोई भी है, सारा दे सारा समान तुहाडा उत्थे छड्ड देणगे, उत्थों इत्थे लै आणगे, ठीक है बई। नंबर नोट कर लो एच के मूवर्स वालियां दा, 416-524-6704 ते कॉल कीती जा सकदी है, 416-524-6704 ते कॉल जल्दी जल्दी जल्दी तो पहला कर लियो, क्योंकि ये जिहड़े बंदे है ये बड़े कमाल दे बंदे आ, बड़े प्रोफेशनल बंदे आ, वड्डे वड्डे ट्रेलर इन्हां दे कोल आ। एच के मूवर्स 416-524-6704, बड़े पुराने साडे मित्र हरमिंदर राणी, और जदों असीं रेडियो प्रोग्राम शुरू कीता सी उदों वी इन्हां दी ऐड चलदी सी। 416-524-6704 ते जल्दी जल्दी कॉल कर लियो।
1: अज दे समें विच हर मापे दी इहो इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई विच वी अग्गे होवे ते अपनियां जड़ां, अपने संस्कारां ते अपनी पछाण नाल भी जुड़िया रहे। इस सुपने नूं साकार कर रहा है गोबिंद सरवर स्कूल। साडा मनना है कि असल सिक्ख्या ओ है जो बच्चे दे दिमाग नूं ज्ञान, दिल नूं संस्कार अते जीवन नूं मकसद देवे। बेहद खूबसूरत जिंदगियां बनाउण लई वचनबद्ध है गोबिंद सरवर स्कूल। गोबिंद सरवर ब्रैम्पटन दी नवीं लोकेशन आ रही है कॉर्नर ऑफ एयरपोर्ट रोड एट क्वीन स्ट्रीट। जेके तू ग्रेड 10 तक रजिस्ट्रेशन करने लई संपर्क करो 905-458-6222।
0: नंबर कर लो भाई नोट, ये बहुत जरूरी नंबर आ, बच्चियां जिन्हां ने छुट्टियां और बच्चे पढ़नगे पढ़ाई करनगे चंगी चीज होएगी।
2: हाय, दिस इज हरप्रीत सिंह फ्रॉम टॉप।

0: हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी.
1: सोचता हूँ हर कागज पे तेरी तारीफ करूं, सोचता हूँ कि हर कागज पे तेरी तारीफ करूं, फिर ख्याल आया कहीं पढ़ने वाला भी तेरा मेरी जान दीवाना ना हो जाए. पंजाबी विरसा द वन एंड ओनली विद सिंह हरजीत शो. चलो जी अच्छा गीत कहना लाऊं लगा किसी को पता गैस करो. चलो तुम थोड़ा म्यूजिक सुनाना मैं जे किसी को पता दस्यो जरूर 9056733337. एक बंदे नूं पता हो सकदा बस जिन्हें कॉल की थी. देखते हैं भी तुसी भी किन्ने दवाने हैं जिहड़े गीतां दी फरमाइश करते हैं. तुहानू भी पता होना चाहिए भी ये म्यूजिक केड़े गीत है. 9056733337 905-673-3337 टैक्सट मैसेज किदा आ गया. लो जी दोबारा कर लो नोट जी नंबर फिर कड़ी गल है. और एच के मूव नंबर दोबारा मंगया जी 416-524-6604 ते कॉल भी की जा सकती है. और तुहाडे वास्ते ये नंबर हाजिर है. लो जी नीलम जी क्या हाल हैं आपके, आपका भी टैक्स आ गया है. नीलम जी वन ऑफ द ग्रेट पर्सन और डायना केयर ते इस सर्विस अपनी देंदे है. नीलम जी थैंक यू वेरी मच, तुहाडी भी गुड मॉर्निंग पहुंच गई है. और लगा नहीं पता किसे नूं गीत किहड़ा ओ महाराज की जनाब दी ग्रेट 905-673-3337 तुसीं तां फरमाइश कीती इस गीत दी जिन्हां ने हुण मैनूं फरमाइश कीती सी गीत उहदे विच इक गीत आ वाला फिर भी नहीं पता लगा. कमाल हो गई यार कमाल हो गई यार. सारी रात पढ़ते रहे सवेरे उठ के कहते भाई आ की गल वाली ओ वीर मेरे हो तुसीं तां फरमाइश कीती सी इस गीत दी तुहानूं ही नहीं पता लगा. इन्ना का बहुत आया हूं तो ज्यादा ही सुनाता कोई साले भी नहीं पता लगा. वेरी वेरी सैड. ओ हो. अच्छा देखो मैं तुम्हें परची भी नाल दे रहा नाल मैं तुम हिंट भी दे रहा नाल तुम एग्जाम्पल भी दे रहा. यह गीत तुम हूं ही फरमाइश कर गए सारे जने सारे एक गीत है तो फिर भी नहीं पता लगा किसी को. सरप्राइज फॉर मी के ये गीत आपको पता नहीं चला. चलो कोई बात नहीं देखते हैं नेक्स्ट कॉल. हेलो
2: हां जी सत श्री अकाल जी.
1: सत श्री अकाल जी. कोचर साहब थोड़ा लास्ट टाइम कोचर है.
2: हां जी हां जी हां जी.
1: वाह जी वाह क्या हाल है. हरदीप जी की हाल है ठीक हो.
2: बस सब ठीक ठाक जी बाबा जी मेहर है जी.
1: चलो वेरी गुड. हुण मैं पहचान गया सर पता लगा गीत केड़ा है.
2: हां जी हां जी ये वो एक गाना है वो हंसनी.
1: अच्छा जिन्होंने गाने की फरमाइश की थी उन्होंने पता नहीं चलिया देख लो. हरजीप जी वन ऑफ द बेस्ट मैन वन ऑफ द एक्सीलेंट पर्सन मैं कह सकता बेस्ट मैन तो उपर एक्सीलेंट पर्सन है साडे वीर जी यानी और अहमदाबाद तो साडे हरदीप जी और पूरा परिवार जिथे नीति जी इन्हां दा बेटा जी बड़े सेवा करदे आ. और मैं अगे भी जिक्र करता हूं जिस वे भी कीर्तन दरबार होंगे है डे फर्स्ट तो लैके एंड ऑफ डे तक इन्हों की सेवा इन्नी होंगी है परिवार की पूरी कि बस बाबा जी इन्हों परिवार के उत्ते ब्लैसिंग अपन रखन और बाबा जी हमेशा सारी फैमिली खुश रखन. हरदीप जी गुड विशेज फॉर यू.

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/EAP
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: संसार दे कोने कोने विच वसदे पंजाबियों तक विरसे दी खुशबू पहुंचाउंदा ए है वतनों दूर रेडियो। दिस इज वतनों दूर रेडियो।
4: वतनों दूर रेडियो विच तुहाडा सारिआं दा दोस्त सुखी निजर तुहाडा सारिआं दा सत्कार करदा है ते सिजदा करदा है कनेडा विच मेहनत करके तरक्की कर रहे सारे परिवारां दा जिन्हां ने वतन तो दूर आके इत्थे खुशहाली दे महल बनाए ने ते वतनों दूर सिजदा करदा उन्हां सारे सिरड़ी इंसानां दा जिन्हां ने इस वतन दीआं तरक्कियां दीआं कहानियां लिखियां ने। वतनों दूर रेडियो सिर चुकाउंदा है उन्हां सारे दोस्तां नूं जिन्हां अपनी कामयाबी दे नाल इत्थों दी धरती ते इत्थों दे लोकां नूं दस्सिआ है कि साडी शान वखरी। वतनों दूर हुण कैनेडा विच वसदे पंजाबियों लई पंजाबी संगीत पंजाबी जवान ते पंजाबी विरसे दी खुशबू पहुंचाउण लई लै के आया है वतनों दूर रेडियो।
3: दिस इज वतनों दूर रेडियो।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: आज खुश तो बात होगी
5: था। ओ ता होना ही है, जो तो तीनो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे, तई नकदा बनदा ही है।
6: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है,
5: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नु वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है। ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है, ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा?
7: चल क्या रहे यहां पर?
5: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
5: पर टिल्लो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा?
9: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
10: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
9: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
11: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा, दाल, चावल, नाले सब्जी ते दूध क्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड। 2945 सैंडोवर्ट पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
12: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, Nepal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, Nepal de vecho, puri family vacation Upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection open.
13: ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच अड़दा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी। सत श्री अकाल जी, मैं हां थोड़ा अपना रोशन प्रिंस ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो।

0: चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट
1: फोर एंड अवनीजर के इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट
0: 6473393521
1: 6473935 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: ओ आज ता कमाल ही होगी, घर वाली कहंदी किचन च रोटी ओदो ही बनू जदों नवे अप्लायंसेस आणगे। मैं गया लाइनिक गल, उसे वेले गड्डी चक्की ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे मूरे ले जा खड़ी करती।
0: जी हां, एन्ना ही सौखा है अपनी किचन नु एक नवा रूप देना। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस दे सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलणगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते। फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, लॉन्ड्री सेट, जो मर्जी ले जाओ। 801 बोवे ड्राइव नियर चकूजी 905-450-2888।
3: देखो जी, करता है अपना नंबर वन, पर मेरा दिल करता है अपना घर सारे तो सोना हो भी।
4: बस इनी गल हो कार।

0: 5091509 और विजिट insuranceforyou.ca।
1: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो या चलो AM 530 24/7 जिन्हें भी प्रोग्राम आंदे ने उन्होंने सुन वास्ते जां देश प्रदेश नो लाइव देखने वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नो www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहते लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहते हो तो उत्ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स के उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नु क्लिक करो, उत्ते तुसी सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।
2: तुहाडियां कारां दी तसल्ली बख्श मरम्मत लई ANJ ऑटो रिपेयर बोल्टन दे विच हन। हर मेक ते मॉडल दी कार दी रिपेयर कीती जांदी है। सेफ्टी इंस्पेक्शन, फ्री एमिशन टेस्ट, न्यू ते यूज्ड टायर पवाओ, रस्ट प्रूफ दा काम, ऑयल चेंज, ब्रेक जॉब, ट्रांसमिशन, इंजन दा कोई भी काम होवे, अज ही अपनी कार नु लेके आओ। हाईवे 50 ते मेफील्ड दे नेड़े नंबर 91 हेली रोड और होम डिपो दे नाल अज ही कॉल करो परमिंदर सिंह होरां नू 905-857-75-96, 905-857-7596। ANJ ऑटो रिपेयर जेड़े के बोल्टन अते ब्रैम।

0: सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015।
1: टीम से तो लेके आए ने कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील रोड ते एक नमी मास्टर प्लान कम्युनिटी जे दे विच 2500 तो भी ज्यादा नमे टाउन हाउसेस सेमी डिटैच ते डिटैच कर तैयार होंगे 2027 एंड 2028 दे विच ट्रेडिशनल two story freehold townhouses buddy backyard the unfinished basement in all sirf $7 lakh di range de vich in the 700s bahut jald aa rahe ne semi detached ghar $8 lakh di range de vich in the 800s releasing very soon sab to khas double car garage wale bade detached ghar sirf $9 lakh di range de vich in the 900s releasing very soon public release to pehla best lot end lot corner lot de layi jald to jald संपर्क करो एट 416-302-0016 416-302-0016 416-302-0016 कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील रोड ते 2500 तो भी ज्यादा घर तैयार हो रहे ने 2027 एंड 2028 दे विच कॉल टीम सिद्धू 416-302-0016 416-302-0016

0: exclusive locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1 ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475041557 647 504 1557। ਕਾਰ ਵੈਨ ਇਸ

0: 905 673 3337 905-673-3337 905-673-3337 अपना फोन नंबर है 905-673-3337। क्या बात है, शो आ रहा भाई बड़ा वड्डा एक, सुनो पहला फिर थोड़ी जी गल बारे करते हैं।
1: टीम फोर एंटरटेनमेंट पेश करते ने पंजाबी विरसा 2026 टोरंटो शो सैटरडे 25 जुलाई नू थिएटर एट ग्रेट कैनेडियन टोरंटो।

0: सोचने लिए मजबूर करते हैं, विच इज एन एक्सलेंट सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग टू आवर कम्युनिटी।
1: थैंक यू सर। नहीं, एज ऑलवेज थैंक यू। ते हमेशा बिडमोन जी तो बहुत सारी एजुकेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, जिन्ना चीजों बारे कई बार नहीं पता होंदा, बट कैनेडा च रेंदे हुए अपन कानून की बहुत जानकारी चाहिए है। सो नंबर एक बार फिर 416-994-8989। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू जी। तो प्रोग्राम है पंजाबी रा, एक मैं मैसेज देना थोनू रॉयल परफ्यूम्स वाले का। वाह भी वाह, रॉयल परफ्यूम्स। देखो यार, परफ्यूम यूज करो प्लीज, एवं ना कि बाहर चल जाए बिना परफ्यूम तो अगला कहूगा कितों आ गया। सो रॉयल परफ्यूम्स, 1 रीगन रोड, यूनिट नंबर 9, सिख संगत गुरु घर के बिल्कुल नेड़े, 200 मीटर दूर। बस ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, कैनेडा US के डिलीवरी होंगी है। royalperfumes.com ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है। परफ्यूम सिर्फ $50 तो, वाह, $50 का परफ्यूम लो, पंजाबी लर्न का रेफरेंस दो, दो परफ्यूम लो तो एक फ्री, दो परफ्यूम लो तो एक बिल्कुल फ्री। नहीं रीसा रॉयल परफ्यूम वाले, इन्हों के परफ्यूम लोंग लास्टिंग ने, 6 to 8 घंटे मिनीमम घट्टो घट्ट परफ्यूम का असर रहा, कपड़िया चो अगले दिन भी बहुत ही प्यारी खुशबू आऊगी। स्विट्जरलैंड तो यह ऑयल इंपोर्ट करके परफ्यूम बनाते हैं, सो उही ऑयल है जेड़ा बाकी कंपनीज डीओर शनैल वह परफ्यूम बनाते हैं ना, वह परफ्यूम $200-$300 का, इन्हों का सिर्फ $50 का, उही ऑयल्स ने उही फैक्टरी नाल इन्हों का कॉन्टैक्ट किया हो। जेड़े मार्केट परफ्यूम 400-500 दे ने, तुहानू 50 च मिलदे आ, एक बार तुसी विजिट करो 1 रीगन रोड, यूनिट 9, सिख संगत गुरु घर दे बिल्कुल नाल। इन्हां दा नंबर लिख लो, मैं भी जाऊंगा यार इन्हां तो परफ्यूम लेके आऊंगा, एवें इन्ने महंगे महंगे ले जाने उहदा की फायदा है। बिल्कुल अपने नाल रॉयल परफ्यूम वाले लोकेटेड ने। सो इन्हां दा नंबर है 437-315-0701। ठीक है, इन्हें कॉल कर लो, परफ्यूम लो इन्हों को, 437-315-0701। स्विट्जरलैंड तो स्पैशल ऑयल इंपोर्ट करके बनाते हैं, दो परफ्यूम नाल एक फ्री है। मेरा नाम लै दौ, 437-315-0701, 437-315-0701 के उत्ते तुसी इन्हां नाल संपर्क कर लो, 437-315-0701 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ। ਦੋਕ ਬੋਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ।